बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: बहुत बहुत बहुत स्वागत आप सबका। हेलो हेलो नमस्कार। नॉनस्टॉप गपशप लेकर आई है आज चैनिका ओनली ऑन एफएम रेनबो कोलकाता। रविवार की सुबह है और ये बड़ी खुशगवार सी बीतती है। वैसे मुझे पर्सनली स्पीकिंग शनिवार ज़्यादा पसंद है क्योंकि दूसरे दिन सुबह उठने की जल्दी नहीं होती और संडे इज यूजुअली, मुझे ऐसा लगता है कि अरे कल फिर से मंडे है तो फिर वही अर्ली मॉर्निंग वाली झिकझिक जो है वो दिमाग में बस घूमती रहती है। तो संडे दोपहर तक ठीक है, मतलब दोपहर का जो लंच होता है वो स्पेशल होता है सबके घर में, तो मेरे घर में भी होता है और तब तक ठीक है, मूड अच्छा रहता है। फिर शाम जैसे ढलने लगती है फिर तो जो मूड जो है ख़राब हो जाता है। तो मेरे हिसाब से रविवार से बेहतर है शनिवार, लेकिन फिर भी क्या ही कहें, एक अलग एक चार्म है रविवार का क्योंकि हमारे बचपन की कुछ यादें जुड़ी हुई हैं इस दिन के साथ, है ना, आपकी भी जुड़ी हुई, लेकिन वो तो अब वापस नहीं आ सकती। लेकिन हम लोग आ जाते हैं संडे सुबह आपसे मिलने रोजाना की तरह और करते हैं कुछ गप्पे, सुनवाते हैं आपको ढेर सारे गाने और इस तरह देखते ही देखते 10:02 से 11 तक का समय यूं चुटकी बजाते बीत जाता है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हो घर में बैठे बैठे हमारे साथ बस बने रहिए, जुड़े रहिए क्योंकि हम आपको एकदम बोर नहीं होने देंगे। बहुत अच्छा अच्छा वाला समय एक साथ बिताएंगे ओनली ऑन नॉन स्टॉप गपशप। फिलहाल अभी घड़ी में समय 10:09 और 51 सेकेंड्स है ना, बढ़िया वाला सही वाला समय हमारी घड़ी बताती है। आप मिला लिया कीजिए जब जब हम आपको समय बताएं। और अभी फिलहाल समय है नॉनस्टॉप गपशप में किसका। अरे बाबा क्या ये कौन सा समय, किसकी मैं बात कर रही हूँ, सोच रहे हैं क्या आप, सोच रहे हैं तो बताती हूँ मैं कि अभी फिलहाल किस चीज का समय हो रहा है हमारे इस शो में।
0: आज के दिन
1: भैया घटनाओं की जो घटा हर दिन को अपने अंदर समेटे रहती है, ये तो आज की ही बात नहीं है, मतलब आज की ताज़ा जो खबर है वो आज की ही ताज़ा खबर है, बाद में वो इतिहास बन जाएगी। तो इसी तरह इतिहास के पन्नों को अगर पलटकर हम देखें तो आज के दिन क्या कुछ घटा, घटनाओं की जो घनी घनेरी घटा है उससे हम आपके लिए लेकर आते हैं रोज़ कुछ इंटरेस्टिंग इन्फो। आज भी आपको हम ज़रूर ज़रूर

जरूर बताना चाहेंगे कि क्या है आज के दिन की खासियत। अच्छा, आज एक बड़ा ही स्पेशल सा डे, इनफैक्ट दो स्पेशल डेज मनाए जाते हैं, दो ऑब्जर्वेंसेस हैं। पहला तो ये कि विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स, ये आज मनाया जाता है और हमारे देश में इसका एक अलग नाम है, विश्व आदिवासी दिवस या विश्व जनजातीय दिवस। हर साल पूरी दुनिया में एक साथ ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। और क्या आपको पता है कि दुनिया भर के 90 से अधिक देशों में लगभग 47.6 करोड़ यानी 47.6 करोड़ लोग जो हैं वो स्वदेशी यानी आदिवासी लोग हैं, और ये वैश्विक आबादी का 6% से भी कम हिस्सा है। लेकिन दुनिया की 7000 भाषाओं में से अधिकांश यही बोलते हैं, ये जो स्वदेशी लोग हैं, जो नेटिव पीपल हैं, और 5000 विभिन्न संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आदिवासी समुदाय पृथ्वी की कुल जैव विविधता के सबसे बड़े, हम कह सकते हैं कि संरक्षक हैं, प्रोटेक्टर हैं। ये हमें, ये जो हमारी जो जैव विविधता है इसको प्रोटेक्ट करने की, सहेजने की ये पूरी इन्होंने जिम्मेदारी उठा के रखी है। और विश्व के 11% वन और 28% सतह जो है इन्हीं के क्षेत्रों में आती है। और इस खास दिन भारत के अलग अलग राज्यों में, खासतौर पर झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, रैलियां और पारंपरिक नृत्य संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथ ही आदिवासियों के अधिकारों और जल जंगल जमीन के संरक्षण पर चर्चा भी की जाती है। और इसके अलावा एक और खास दिन है, मैंने कहा आज बुक लवर्स डे है। हर साल 9 अगस्त को ये खास दिन सेलिब्रेट किया जाता है दुनिया भर में। जी हाँ, और ये जो एक जो जाति मैं कहूंगी किताबी कीड़ा जो जाती है, प्रजाति है, ये केवल एक देश या स्थान में तो सीमित है नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अनगिनत किताबें पढ़ते हैं ता उम्र। और क्यों ना पढ़ें बाबा, इतनी बेहतरीन किताबें लिखी गई हैं जिसे पढ़कर न केवल आपकी नॉलेज बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, अच्छी अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन भी हासिल होती है, और साथ ही नए नए शब्दों का जो भंडार है वो भी आपका बढ़ता है, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है। तो अच्छी किताबें पढ़कर आप न केवल अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं, नए शब्द आपके जो आपका जो शब्दकोश है पर्सनल वाला, उसके शब्द नए नए बढ़ते हैं, आप अपनी लेखनी भी बेहतर कर सकते हैं। यानी ऐसे लोग जो सोचते हैं कि मैं आगे चलकर लिखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो भी अगर किताबें पढ़े उनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे फायदे केवल स्कूल कॉलेज के बच्चों के लिए नहीं, 8 से 80 साल के लोग किताबों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, बस इसीलिए ये खास दिन मनाया जाता है बुक लवर्स डे। और मानसिक और शारीरिक सेहत को दुरुस्त बनाए रखने के लिए भी कहते हैं, ऐसे शोध हैं जो कहते हैं कि किताबें पढ़ना अच्छी बात होती है। और इसी के साथ अभी फिलहाल के लिए मेरी बकबक को थोड़ा सा मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगी और आप सबके लिए लेकर आऊंगी एक खूबसूरत सा गीत, क्योंकि हम कहती हैं कि नॉनस्टॉप गपशप में हम गाने ज्यादा सुनवाते हैं, तो इस बात पर हमको अडिग रहना है कि नहीं। तो चलिए सुनते हैं सुनिधि चौहान और हृदय गट्टानी को।

भैया आज के दिन जो हमारा सेगमेंट है वो मुकम्मल नहीं हुआ है, उसको हम टू बी कंटिन्यूड छोड़ कर चले गए थे थोड़ा गीत गुनगुनाने, गाने मस्करी करने, और लौटे हैं तो मैं बताऊं आपको कि आज के दिन और भी कुछ बहुत कुछ हुआ था। 1683 में एक आदेश के जरिए ब्रिटिश राजशाही ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में युद्ध अथवा शांति की घोषणा का अधिकार दिया था। 1831 में अमेरिका में पहली बार स्टीम इंजन वाली छुक छुक छुक छुक छुक छुक ट्रेन आज के दिन चली। 1892 में थॉमस अल्वा एडिसन ने टू वे टेलीग्राफ का पेटेंट करवाया था, भैया आज ही के दिन। 1925 में आज के दिन एक बहुत बड़ी घटना घटी थी हमारे देश में, जिसने हमारी आज़ादी की लड़ाई की जो आंधी उस वक्त चल रही थी उसमें बहुत जोर का बवंडर मचाया, क्रिएट किया, और वो है काकोरी कांड। आज काकोरी कांड की वर्षगांठ है। क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन लूटी थी, आपको ये अवश्य ही पता होगा, हम सब ने इतिहास की किताबों में पढ़ा है और इसकी चर्चा जो है वो बहुतेरे बार हुई है, और ये जो घटना हुई इसने युवाओं के दिल में जोश का संचार किया। और क्रांतिकारियों का क्या मकसद था इस ट्रेन को लूटने का? सरकारी खजाना लूटकर वो उन पैसों से हथियार खरीदकर अपने सशस्त्र अभियान को और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते थे। तो आज है वही दिन, वही फेटफुल डे, 9 अगस्त। इसके अलावा 1945 में अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया था आज ही के दिन। 1970 में देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और गुमनाम नायक त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती का निधन हुआ आज ही के दिन, जिन्होंने अपने जीवन के 30 वर्ष जो है वो जेल में गुजारे थे, और संभवतः सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाले आप स्वतंत्रता सेनानी हुए। 1971 में आज ही के दिन सोवियत विदेश मंत्री आंद्रे ग्रोमिको ने भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह के साथ सोवियत भारत शांति, मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए, और ये संधि दोनों देशों के दोस्ताना संबंधों में एक मील का पत्थर साबित हुई थी। और 2005 में आज ही के दिन यानी 9 अगस्त को नासा का मानव युक्त अंतरिक्ष यान डिस्कवरी जो 14 दिन की अपनी साहसिक और जोखिम भरी यात्रा के बाद कैलिफोर्निया स्थित एयरबेस पर सकुशल उतर पाया था। तो ये रहा ब्योरा, और मतलब ब्योरा आज के दिन का 9 अगस्त को क्या कुछ घटा था, और हमारा ये सेगमेंट अब हम फाइनली

0: पाप करते हैं, जिसे हम कहते हैं
1: आज के दिन। थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

सी बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।

0: सी बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: चैनिका के साथ आप सुन रहे हैं नॉन स्टॉप गपशप ओनली ऑन एफएम रेनबो कोलकाता। और अब समय हो चला है कि हम आपको बता दें मौसम की जानकारी ताजा ताजा। और सुबह मिले इस मौसम विभाग द्वारा दी गई इस इन्फो शीट में जो मुझे दिख रहा है, मैं आपके साथ साझा करूंगी और बताऊंगी कि आने वाले 24 घंटों में कोलकाता और आसपास के इलाकों में मौसम कैसा रहने वाला है। जी, कहा जा रहा है

कि आसमान जो है वो कुछ हद तक बादलों से ढका रहने वाला है। ये थोड़ी शायराना अंदाज में मैंने कोशिश करी हूँ आपको ये बताऊं कि दोपहर और शाम के वक्त आसमान में यूं ही बस बादल जो है वो घूमा फिरा जैसे करते हैं आजकल रोजाना ही, वैसे ही घूमेंगे फिरेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गरज के साथ छींटे पड़ने की भी आसान है, आसार हैं जी। आसान तो नहीं है ये, बहुत मुश्किल, लेकिन आसार है। और इसके अलावा अधिकतम तापमान जो है वो आज 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री यानी 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। इसके अलावा अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अधिकतम आपेक्षिक जो आर्द्रता है वो 98% के आसपास रहेगी और जो न्यूनतम आपेक्षिक आर्द्रता है वो 71% के आसपास रहने की ये जो मतलब संभावना है ये जताई गई है। और ये आने वाले 24 घंटों के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि बीते 24 घंटे में जो तापमान था, अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस यानी 31.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया था। और हमारे मछुआरे भाइयों के लिए आज सुबह एक चेतावनी जारी की गई थी, जिसे मैं फिर से दोहराना चाहूंगी। ये चेतावनी मिली थी लगभग 7 बजे के करीब और उस चेतावनी में कहा गया था कि बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटवर्ती इलाकों में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक तेज हो सकती हैं। इसलिए हमारे मछुआरे भाइयों को आने वाले 6 से 7 घंटों में समुद्र की तरफ कूच ना करने की हिदायत दी गई थी। मैं फिर से दोहराती हूँ, हमारे जो मछुआरे भाई रहते हैं पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटवर्ती इलाकों में, आप कृपया आज ये जो ड्यूरेशन है, ये जो सुबह से लेकर दोपहर तक का समय है, आप कृपया समुद्र की तरफ बिल्कुल बिल्कुल भी न जाएं, क्योंकि मौसम जो है वह बहुत खराब रहने वाला है। तो हमने मौसम विभाग से मिली जो जानकारी थी वो सुन ली, जान ली, अपने दिल में बैठा ली और जितने भी प्लान्स आज हम बनाएंगे या बना चुके हैं उनमें थोड़ा बहुत फेर बदल या फिर जैसा है एज इट इज चलने दो वाला जो अप्रोच है वो सारा दिमाग में हमने जो कैलकुलेशन था वो कर लिया ना। तो चलिए फिर से एक बार सुनते हैं एक बेहतरीन तड़कता फड़कता गाना आपके लिए। और है क्या मेरे पास गप्पे हैं और गप्पों के साथ साथ बहुत सारी ब्यूटीफुल मेलोडीज हैं। तो चलिए सुनते हैं अगला गाना आप सबके लिए, सुनिधि चौहान और पापोन की आवाज में, बर्फी से बर्फी। चलिए सुनते हैं गीत।

लुके छुपे जो ख्याल बावरे हैं वो गुदगुदा जाते हैं नहीं अंदर से हमें, और लगता है कि ये जो ख्याल है, ये जो इन ख्यालों से पुलाव जो हम पका रहे हैं, ये अगर वाकई में सच हो जाए तो कितनी कितनी खूबसूरत हो जाएगी हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी। और होता है कभी कभी ये ख्याली पुलाव जो है वो असल में, असल ज़िंदगी में स्वाद भर देते हैं, सच हो जाते हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप भी जो पकाते हैं अंदर ही अंदर ख्यालों की खूबसूरत पुलाव वाली डिश, वो सच हो जाए कभी। फिलहाल तो सच्चाई ये है कि आज है 9 अगस्त, और मैं बताऊंगी अभी आपको कि कौन कौन से वो खास लोग हैं, खास व्यक्तित्व हैं जो मना रहे हैं आज अपना जन्मदिन। हम याद कर रहे हैं आज आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार मनोहर श्याम जोशी को। 1933 में आपका जन्म हुआ था और आज आपकी जयंती है। भावभीनी श्रद्धांजलि हमारे प्रिय साहित्यकार को। इसके अलावा 1936 में जन्म हुआ था भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता और गीतकार सावन कुमार चाक का। में आज ही के दिन जन्म हुआ था अभिनेता महेश बाबू का। 1969 में अभिनेता विवेक मुशरान का, और 1993 में जिमनास्ट दीपा कर्मकार का। सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और अभी आप सबके लिए अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, सुनते रहें, साथ रहें ओनली ऑन FM रेनबो कोलकाता। हम लेकर आए हैं कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: एक चुटकी नुस्खे,
2: एक चुटकी नुस्खे में आज बात करेंगे मॉनसून में किस तरह से रखें आपके बालों का खास ख्याल।

0: बाल। अच्छा, बरसात के मौसम में अक्सर बाल गीले हो जाते हैं, आप छाता कैरी नहीं कर रहे, झमाझम बारिश हो गई, और ऐसे में होता ये कि आप जहां जा रहे हैं वहां पहुंचकर, घर हो ऑफिस हो, जाकर जैसे ही बाल सूख लेते हैं, गीले बाल सुखाकर आप बांध लेते हैं। इसके चलते होता ये कि बाल जो है वो कमजोर होकर झड़ना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ना, इतना हेयर फॉल हो रहा है बारिश के मौसम में, क्यों हो रहा है? ये एक खास वजह है कि गीले जो बाल हुए बारिश के पानी में, तो उनको सुखाकर हमने बांध लिया, ये नहीं करना है। इसलिए जब भी आप भीगे बारिश के पानी में, माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश करके साफ पानी से बालों को जरूर धोएं, और अच्छे से जब बाल सूख जाए हवा में सुखाने के बाद ही उनको बांधें। और एक छोटी सी टिप, बारिश के मौसम में बालों को पोषण देने के लिए ऑयल बेस्ड सीरम का इस्तेमाल करना बेहतर रहता है। और इसके अलावा हर 15 दिन पर बालों की डीप कंडीशनिंग भी करना बहुत बहुत जरूरी है। पूछेंगे आप, अगर आपको नहीं पता कि कैसे की जाती है, पूछेंगे ना कि कैसे की जाती है ये डीप कंडीशनिंग, होती क्या है आखिर, तो इसके लिए दूसरा कोई एपिसोड, दूसरा कोई पर्व होगा ना बाबा। आज सब कुछ बता दूं मैं एक चुटकी में, सारा आप मजा लेना चाहते हैं, होगा नहीं ऐसा। अच्छा, एक छोटी सी और बात की, साथ ही आपको इन सब दो चीजों के बारे में आज हमने बात की, दो बातें मैंने आपको बताई, तो इसके साथ आपको हेल्थी डाइट लेना भी बहुत जरूरी है। आप अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, अच्छे हेयर आपके दिखे आप चाहते हैं, तो आप खाना अच्छा नहीं खाएंगे तो चलेगा क्या? जरूरी है, लाजमी है कि अच्छा खाना भी आप साथ में खाएं। और कभी और जरूर डीप कंडीशनिंग की हम बात करेंगे।
1: एक चुटकी नुस्खे,

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

culture. आज दोपहर 2 बजे से विधाननगर स्थित एक कैफे में डूडल आर्ट वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, डूडल आर्ट के शौकीन हैं, उसमें माहिर हैं, तो आप इस वर्कशॉप को अवश्य ज्वाइन करें। इसके अलावा मिलेनियम पार्क से रोजाना एक प्राइवेट क्रूज द्वारा मॉनसून इवनिंग क्रूज सर्विस चलाई जा रही है। बारिश में हुगली नदी पर ठंडी बयार का मजा लेना हो तो जरूर जाइए। और ये थी कोलकाता में होने वाली कुछ स्पेशल इवेंट्स की जानकारी, जहां अगर आप चाहें, आपका मन चाहे तो आप शामिल हो सकते हैं। कोलकाता कल्चर। और देखते देखते हमारा जो समय है ये अब यहीं पर सिमट जाए।

अच्छे गाने हमने सुने, अच्छी अच्छी बातें की, और अब चलिए चलते चलते ये सिलसिला जो है इसको हम तोड़े नहीं, अंतिम गाना कार्यक्रम का ये भी एकदम ज़बरदस्त खूबसूरत होना चाहिए, होने की पूरे आसार हैं आप सबके लिए। सुनते हैं, क्या सुने बताइए, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से एक ड्यूएट गाना हो जाए, श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज़ में, ओनली ओनली ओनली फॉर यू, और चैनिका इज फाइनली फाइनली साइनिंग ऑफ। सुनते रहे साथ रहे FM रेनबो कोलकाता, फिर किसी और दिन ज़रूर होगी आपसे मुलाकात।

गुड आफ्टरनून, नमस्कार और सभी का स्वागत है 107 एफएम रेनबो पर। आरजे अंकित आपके साथ और लेकर हाजिर हूं मैं कार्यक्रम दिन का तड़का। दोपहर के 3:02 हो चुके हैं दोस्तों, और मैं इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में और इस शो में रहने वाला हूं 4 बजे तक आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, दिन का तड़का यानी आपका जो ये 1 घंटा है उसमें तड़का लगाने के लिए लेकर आया हूं मैं कुछ ब्लॉकबस्टर गाने। जी हाँ दोस्तों, सुपरहिट गानों के साथ साथ मैं भी कुछ आपके साथ बोलते रहूंगा, शेयर करते रहूंगा, साझा करते रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का एक कार्यक्रम इस पहले ट्रैक के साथ।

जी हाँ दोस्तों, आवारापन टू से आप सुन रहे थे टाइटल ट्रैक अरिजीत सिंह की आवाज में, अमाल मल्लिक का था, कंपोजिशन रश्मि विराग के थे, बोल दिया। दोस्तों इमरान हाशमी आ रहे हैं वापस से आवारापन टू में 19 साल बाद। यहाँ 2007 में रिलीज हुई थी आवारापन, और इसका जो सीक्वल है वो रिलीज होने वाला है इससे ही अगस्त में। तो जो मिलेनियल्स है मेरी तरह, वो तो काफी इमोशनली अटैच्ड होंगे इस मूवी के साथ, मुझे जहां तक लगता है।

फिल्म जब तक है जान का टाइटल ट्रैक जावेद अली शक्तिश्री गोपालन की आवाज में, कंपोजिशन यार रहमान की, लिरिसिस्ट गुलजार। और दोस्तों, खेल मंत्री ने प्रज्ञा नंद को दी बधाई जी। यहाँ केंद्रीय खेल मंत्री मानसुख मंडविया ने ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञा नंद को अपना पहला सेट लुइस रैपिड एंड बिल्टूस खिताब जीतने पर बधाई दी। डॉक्टर मानसुख मांडविया ने बधाई देते हुए कहा कि उनका शानदार खेल और समर्पण पूरे देश के लिए गर्व और प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है।

फिल्म रावण से दोस्तों शफकत अमानत अली की आवाज में आप सुन रहे थे ट्रैक विशाल शेखर कंपोजिशन कुमार के थे बोल। 3:15 PM हो चुका है दोस्तों, आर्जे अंकित आपके साथ कार्यक्रम चल रहा है तीन का तड़का आपके अपने चैनल पर यानी आकाशवाणी में 107 FM रेनबो पर। जी हाँ, आर्जे अंकित आपके साथ और सुना रहा हूँ बैक टू बैक धमाकेदार ट्रैक्स, रहूंगा 4 बजे तक आपके साथ। और दोस्तों कहीं मत जाइए, बस आप बने रहिए क्योंकि आने वाला अगला और एक ट्रैक बेहतरीन रोमांटिक आपके लिए।

फिल्म रेडी से दोस्तों सुन रहे थे एक रोमांटिक ट्रैक तुलसी कुमार के की आवाज में, प्रीतम का संगीत था और नीलेश मिश्रा के थे बोल। दोस्तों एक जरूरी सूचना वेदर फोरकास्ट के बारे में आपको दे दूं कि अगले 2-3 घंटे के दौरान पूर्वी बांकुड़ा हुगली और अगले 2-3 घंटे के दौरान दोस्तों यहां पे 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने के संभावना और साथ ही बिजली के साथ तेज बारिश होने की भी संभावना है, तो आप लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी जाती है। और दोस्तों एक और जरूरी सूचना वो भी वेदर से लेकर कि हल्की से मध्यम गरज और बिजली गिरने के साथ हल्के से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है अगले 2-3 घंटों के दौरान। हुगली जिले के कुछ हिस्सों में इसका प्रभाव पड़ने की प्रबल संभावना है। पुरुलिया नदिया और मुर्शिदाबाद में दोस्तों इसका असर आपको देखने मिलेगा। और दोस्तों ये कहावत तो हमने हमेशा सुनी है कि देर से ही सही लेकिन काम जरूर होगा, देर है लेकिन अंधेर नहीं। जी हाँ, चाहे जैसे भी हो देर से हम दोस्तों हर काम करना सीख लेते हैं, देर से ही हम दोस्तों चलना सीख लेते हैं, देर से ही हो हम अकेले जीना जरूर सीख लेते हैं।

0: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति।
1: पीएम फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक किफायती फसल बीमा योजना है। इसके तहत प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर किसानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। खरीफ फसल के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। आप इसके लिए ऑफिशियल PMFBY पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसकी कवर अवधि बुवाई से लेकर

0: कटाई के बाद तक के जोखिम सुरक्षित हैं। किसानों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए बहुत कम प्रीमियम दर तय की गई है, बाकी खर्च सरकारी उठाती है। नुकसान का आकलन करने के लिए आधुनिक तकनीक और क्रॉप कटिंग का इस्तेमाल होता है। इसके आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज है आधार कार्ड और पहचान पत्र, बैंक खाता पासबुक जो आधार से जुड़ी हो, खेत के कागजात, खसरा या खतौनी नंबर, बुवाई का प्रमाण पत्र। आवेदन करने के तरीके के बारे में दोस्तों जानते हैं, ऑफिशियल PMFBY पोर्टल पर जाएं या मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करें, बैंक और जमीन से जुड़ी सभी सही जानकारी भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और प्रीमियम का भुगतान करें।
1: परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति, सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना

0: फिल्म द डर्टी पिक्चर से दोस्तों कमाल खान की आवाज में आप सुन रहे थे ये ट्रैक, विशाल शेखर का कंपोजिशन, रजत अरोड़ा के बोल। और दोस्तों आशीष यादव ने भाला फेंक स्पर्धा में जीता रजत पदक, नीरज चोपड़ा ने भी की सराहना। भारतीय एथलीट आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसी के साथ वह इस स्पर्धा में पोडियम तक पहुंचने वाले दूसरे भारतीय एथलीट बन गए हैं।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर।

फिल्म रॉकस्टार से मोहित चौहान की आवाज़। दोस्तों आप सुन रहे थे ट्रैक ए आर एम का कम्पोजिशन इरशाद कामिल के बोल। 3:40 PM हो चुका है, आरजे अंकित आपके साथ शो चल रहे थे, इनका तड़का सुना रहा हूँ बैक टू बैक कुछ रॉकिंग ट्रैक्स आप लोगों के लिए। आप सुन रहे हैं हमारे ये कार्यक्रम 107 FM रेनबो पर, और सिर्फ 107 पर नहीं दोस्तों, आप अपने फ़ोन पर भी सुन सकते हैं। डाउनलोड करिए न्यूज़ ऑन एयर प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप, ट्यून करिए FM रेनबो और इन्जॉय करिए हमारा कार्यक्रम बैक टू बैक। और दोस्तों मैं रहने वाला हूँ तिनका तड़का में आप लोगों के साथ शाम के 4 बजे तक।

फिल्म मर्डर 2 से सुनिधि चौहान की आवाज दोस्तों सुन रहे थे ट्रैक संगीत सिद्धार्थ हल्दीपुर का था, कंपोजिशन कुमार के बोल। दोस्तों काफी देर से हम रोमांटिक ट्रैक सुन रहे हैं, स्लो ट्रैक सुन रहे हैं, क्यों ना थोड़ा सा मूड बदला जाए, थोड़ा सा एनवायरनमेंट बदला जाए, थोड़ा सा माहौल बदला जाए, क्योंकि संडे का दिन है तो पार्टी शार्टी तो बनती है। दोस्तों सुन लेते एक पार्टी वाला ट्रैक आप लोगों के लिए।

ममता शर्मा और जावेद अली की आवाज में दोस्तों आप सुन रहे थे ट्रैक फिल्म यमला पगला दीवाना से। कंपोजिशन और लिरिसिस्ट दोनों ही थे अनु मल्लिक के। और दोस्तों अगर आप देवल परिवार के फैन हैं तो यहां पर आपको इस मूवी में सनी देवल, बॉबी देवल और धर्मेंद्र तीनों ही आपको मिल जाएंगे।

फिल्म दिल तो बच्चा है जी से दोस्तों मोहित चौहान की आवाज में आप सुन रहे थे। ये गीत प्रीतम का संगीत, नीलेश मिश्रा के बोल दोस्तों। और दोस्तों बढ़ेंगे हम हमारे कार्यक्रम के आखिरी ट्रैक के तरफ। और दोस्तों इस कार्यक्रम में दोस्तों मैंने तड़का लगा के आपको काफी कुछ पूरा कार्यक्रम ही परोस दिया है, लेकिन अगले ट्रैक के बाद दोस्तों और भी कार्यक्रम आने वाले जहां पर आपको अलग अलग फ्लेवर्स मिलने वाले हैं। जी हाँ, तो कहीं मत जाइए कि बने रहिए 107 FM रेनबो पर, क्योंकि आने वाले ढेर सारे कार्यक्रम, लेकिन सुनते जाइए ये लास्ट ट्रैक। और मैं आप लोगों से मिल लूंगा फिर से इसी चैनल पर ठीक 7 बजे के बाद। और अगर आप मुझसे फिर से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं मुझसे 5:15 पर FM गोल्ड पर।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: একটা ছোট্ট বারান্দা এবং সেই ছোট্ট বারান্দার একটা সুন্দর করে ছবি তুলে নিয়ে এআইকে কমেন্ট দিয়েছিলাম, সাজিয়ে দাও গাছপালা দিয়ে। বিশ্বাস করো, সত্যি কথা বলছি,

गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आरजे अंकित और आप सुन रहे हैं 101.7 एफएम रेनबो। रविवार की इस खूबसूरत शाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी अपनी महफिल यादों की बारात में। दोस्तों, फिल्मों की दुनिया में हर शुक्रवार अपने साथ एक नई कहानी लेकर आता है। कोई कहानी हमें हंसाती है, कोई रुलाती है और कोई हमें प्यार करना सिखाती है, और कोई ऐसी होती है जिसकी कहानी शायद हम भूल जाएं लेकिन उसका एक गीत सालों बाद भी कानों में पड़ते हैं, हमें उसे उसी दौर में वापस ले जाता। और आज की हमारी यादों की बारात थोड़ी और खास है क्योंकि आज हम सबसे पहले बात करेंगे उन फिल्मों की जो 7, 8 और 9 अगस्त के आसपास अलग अलग वर्षों में रिलीज हुई। और जब इन तारीखों की बड़ी फिल्में यादों में पूरी होंगी तो हम थोड़े पीछे भी जाएंगे अगस्त के पहले हफ्ते की ओर। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज की शाम में कॉमेडी, रोमांस, दोस्ती, संगीत और कुछ ऐसे फिल्में यादें हैं जिनके साथ शायद आपकी भी कोई कहानी जुड़ी हो। तो चलिए यादों की इस भारत का पहला पड़ाव शुरू करते हैं साल 2015 से। बैंगिस्तान रिलीज हुई थी दोस्तों ये फिल्म 7 अगस्त 2015 में। दो बिल्कुल अलग अलग विचारों वाले किरदार, एक काल्पनिक देश और एक ऐसी कहानी जिसमें कॉमेडी के रास्ते एक गंभीर संदेश देने की कोशिश की गई। फिल्म थी बंगिस्तान। रितेश देशमुख और पुलकित सम्राट की इस फिल्म का संगीत राम संपत ने तैयार किया था। और आज की हमारी महफिल की शुरुआत करते हैं एक मस्ती भरे गीत के साथ। दो दोस्त हैं, वीकेंड है, माहौल है और अब थोड़ी सी मस्ती तो बनती है। सुनिए फिल्म बंगिस्तान का ये गीत।

फिल्म बेंगिस्तान से दोस्तों आप सुन रहे थे सुना महापात्र अभिषेक नेहलवाल और शादा फरीदी की आवाज में। यह गीत राम संपत का संगीत, पुनीत कृष्णा, सुमित पुरोहित और करण अंशुमन के थे बोल। दोस्तों कभी कभी किसी गीत को सुनने के लिए हमें किसी खास वजह की जरूरत नहीं होती, बस धुन शुरू होती है और मन अपने आप कहीं चला जाता है। कभी कॉलेज के दिनों में, कभी पहली नौकरी के दिनों में, कभी किसी पुराने दोस्त के पास और कभी किसी ऐसे इंसान के पास जिसे शायद हम आज भी याद करते हैं। लेकिन अब यादों की ये बात लेकर चलती है एक ऐसे किरदार की तरफ जिसने अपने अंदाज से पूरे देश को हंसाया, एक ऐसा किरदार जिसके नाम ही है किंग। चलिए चलते हैं 2008 की ओर। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की जोड़ी, ऑस्ट्रेलिया की खूबसूरत लोकेशन और एक बेहद मस्त मौला किरदार हैप्पी सिंह। फिल्म थी सिंग इज किंग, रिलीज हुई थी 8 अगस्त 2008 में। फिल्म ने कॉमेडी और एक्शन के साथ साथ हमें एक ऐसा संगीत एल्बम दिया जिसमें कई यादगार गीत थे। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

0: दोस्तों फिल्म सिंग इज किंग से आप सुन रहे थे ये गीत लव जंजुआ सूजी क्यू की आवाज में, प्रीतम का संगीत, मयूर पुरी के बोल। मैं दोस्तों इसी के साथ इजाजत चाहूंगा और सुनेंगे आप अगला कार्यक्रम, एक विशेष कार्यक्रम होगा अभी 7:45 से और 8:02 से आपके साथ जुड़ेंगी सुलक्षणा यादव की बारात, सिलसिला को करेंगी कंटिन्यू आपके लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए 107 FM रेनबो पर।
1: We bring you a talk on strengthening access to justice for senior citizens, from constitutional values to classroom learning, by Professor Vageshwari Deswal, University of Delhi. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: भारत में एक बहुत ही स्पीड से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है। हमारी जो जनसंख्या है उसमें जो हम एल्डर पॉपुलेशन की बात करें तो वो 2011 में जो 100 मिलियन के करीब थी वो 2036 तक जाते जाते 230 मिलियन हो जाएंगी, अर्थात कि वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएंगी। और हमें ये समझना होगा कि आने वाले समय में हर 7 भारतीयों में से एक भारतीय इसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, मतलब वो 60 या उससे ज़्यादा उम्र का होगा। तो हम जब इस टॉपिक पे बात करें तो पहले ये समझें कि सीनियर सिटीजन कौन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो भी 60 या उससे बड़ी उम्र के हैं उन्हें हम एल्डरली मानेंगे। इंडिया में भी नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन्स के हिसाब से जो भी 60 साल से ऊपर की आयु के हैं वो सब सीनियर सिटीजन्स हैं। यही डेफिनेशन हमने अपने सीनियर सिटीजन्स एक्ट में भी डाली है। तो आप देखिए, कानून ने तो एज बेस्ड हमको बता दिया है कि एल्डरली लोग कौन हैं, लेकिन जनरली हम लोग कैसे मानते हैं कि जो 80 से ऊपर हैं उनको हम एक एल्डरली कैटेगरी में शामिल करते हैं। इंडिया में हमेशा से जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें बुजुर्गों को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। वो हमेशा से बहुत आदरणीय रहे हैं, देव स्वरूप हैं। तो हम

ऐसे देश के निवासी हैं जहां हम अपने बुजुर्गों को इतना मान सम्मान देते हैं, तो सवाल ये उठता है कि एल्डर एब्यूज, ये जो ऐसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हमारे यहाँ थे ही नहीं, वो क्यों यहाँ पर आ गए, जिसके लिए कि अब उन्हें एड्रेस करने के लिए हमें कानून की सहायता लेनी पड़ रही है। अगर हम बात करें, शहरीकरण होता गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, हमारा जो जॉइंट फैमिली सेटअप था वो डिसइंटीग्रेट हो गया। जॉइंट फैमिलीज में जब तक हम लोग रहते थे तो एक पर्सनलाइज्ड होम केयर, हर इंसान के परिवार में उसको किस चीज की आवश्यकता है उस चीज का ध्यान रखा जाता था। लोनलीनेस की तो कोई बात थी ही नहीं, अगर हम कहें इमोशनल आइसोलेशन, डिप्रेशन, इन सब चीजों के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता था, क्योंकि एक भरा पूरा परिवार होता था जिसमें बुजुर्गों को भी कंपनी मिल रही है, बच्चों को भी कंपनी मिल रही है, जो लोग जॉब करते हैं, जो कमाने वाली आयु के लोग हैं उसमें, उनको भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता था क्योंकि परिवार की तरफ से वो निश्चिंत रहते थे। तो एक अच्छी मेंटल हेल्थ थी, इमोशनली सब लोग स्टेबल थे, सब घर का जो भी चोर्स, जो डोमेस्टिक चोर्स की हम बात करें, काम काज आपस में बढ़ जाता था। पेरेंट्स जो थे, एल्डरली थे, उनको भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस रहता था कि हम किसी तरीके से परिवार के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर हम पैसा नहीं भी कमा रहे हैं तो हम बच्चों की देखभाल करने में अपना सहयोग दे रहे हैं, हमारा योगदान है कि किस तरीके से हम उन्हें अपने कल्चर, अपने वैल्यूज, कस्टम्स, ये सब उन्हें हम पास ऑन कर रहे हैं। तो एक कल्चरल कॉन्टीन्यूटी भी बिलोंग थी और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी था। लेकिन जैसे जैसे फैमिली, जॉइंट फैमिली सेटअप का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो समझ में आने लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर रहे हैं बच्चों को, महिलाओं को, एल्डरली लोगों को भी, क्योंकि ये तीनों ऐसे वर्ग थे जिनके हाथ में कोई भी फाइनेंशियल या अर्निंग कैपेसिटी नहीं थी, तो कोई डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी नहीं थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 जो कि एक इतना इलास्टिक प्रोविजन है कि हर तरीके के जो मानव अधिकार हैं उन्हें हम आर्टिकल 21 के तहत कवर कर लेते हैं। और आर्टिकल 21 वैसे तो उसको कानूनी भाषा में कहें, वो कहता है नो वन टू बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन इसमें जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो जो राइट टू लाइफ है उसके डायमेंशंस बहुत ज्यादा हैं, और राइट टू लाइफ सिर्फ एक पशु की समान जीवन की नहीं, हम एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करते हैं, तो उसमें हर तरीके का आदर सम्मान भी होना चाहिए, आपके फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, हर चीज का ध्यान उसमें रखा जाना चाहिए। राम दुलार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी अलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 को हम वायलेट कर रहे हैं अगर हम अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ऐसे ही 2018 में अश्विनी कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि हम इन पेंशन स्कीम्स वगैरह को रीअसेस करें, ओल्ड एज होम्स बनाएं, जो हमारा ये कानून है सीनियर सिटीजन्स एक्ट, उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करें, मेंटेनेंस जो ले सकते हैं अपने बच्चों से उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे जजमेंट्स हैं। आर्टिकल 41, स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ ओल्ड एज। एंड आर्टिकल 46 जो कि मैंडेट करता है कि स्टेट हमारे जितने भी कमजोर वर्ग हैं उन सबके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, उन कमजोर वर्गों में हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी आते हैं। तो आर्टिकल 41 और 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे देश को, हमारे स्टेट को एक गोल देते हैं कि उस हिसाब से हमको कानून बनाने हैं, उस हिसाब से हमें पॉलिसीज बनानी है जिसमें कि हम अपने बुजुर्गों की को सुरक्षित रख सके। हमारे पास अन्य कानून भी हैं जैसे कि हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट है जहां कि ये एक पर्सनल लॉ है जो कि केवल हिंदुओं पे लागू होता है। तो इस कानून के हिसाब से बेटों और बेटियों दोनों के ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने माता और पिता को संभालने की। देखिए पहले हम कहते थे बेटी को जब शादी कर दी गई तो उसे दूसरे परिवार का हिस्सा मानते थे, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। लेकिन अब कानून क्या कहता है, न दहेज न महंगी शादी, बेटी को दीजिए संपत्ति आधी। और जब हम उसको अधिकार दे रहे हैं तो साथ में हम उस पर जिम्मेदारी भी डालेंगे। तो ये जिम्मेदारी है कि अब केवल ये नहीं कि बेटे ही संभालेंगे, बेटियों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखें। उसी तरीके से मुस्लिम लॉ जो है उसमें भी बेटियों के ऊपर बराबर की जिम्मेदारी है। पारसी लॉ और क्रिश्चियन लॉ में कोई इस तरीके की बात नहीं कही गई है कि बच्चों की जिम्मेदारी है बड़ों को संभालने के लिए। इसीलिए हमारे पास सेक्युलर लॉ है, पहले हम CRPC कहते थे उसे, अब हम कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये जो कानून है ये भी प्रोवाइड करता है एक सेक्युलर रेमेडी जिसमें कि हर धर्म के लोग जाकर के वहां पर जो बच्चे हैं उनसे माता पिता अपना मेंटेनेंस मांग सकते हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी

0: जिम्मेदारी है कि अगर वो संभालने में सक्षम हैं अपने माता पिता को और माता पिता खुद को ध्यान रखने में सक्षम नहीं है तो जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उसके अलावा 2005 में हमें कानून मिला प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, क्योंकि देखा गया है कि अगर हम हमारे से पहली पीढ़ी की महिलाओं की बात करें तो बहुत ऐसी महिलाएं बहुत कम थी जो कि बाहर जाती थी, कमाती थी, उनका कोई सोशल सर्कल था या उनकी कोई इनकम थी ओल्ड एज में। तो ऐसी जो औरतें हैं जो परिवारों में हैं लेकिन अगर उनका किसी भी तरीके से अब्यूज हो रहा है तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में क्योंकि वो रह रही हैं तो उनके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, उनके लिए रेजिडेंस ऑर्डर्स, उनके लिए मेंटेनेंस ऑर्डर्स, इन सब तरीके के रिलीफ का प्रावधान है कानून में।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर सीनियर सिटीजंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज टू क्लासरूम लर्निंग। वी स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk on strengthening access to justice for senior citizens from constitutional values to classroom learning.
2: मेजर एरियाज जिन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, इनकम सिक्योरिटी, क्योंकि अगर हम किसी तरीके से ये इंश्योर कर सकें कि बुजुर्गों के पास अपने लायक एक इनकम है तो उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर उनके हेल्थ केयर एक बहुत ही मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है, क्योंकि जैसे वो बड़े होते जाते हैं फंक्शनल कैपेसिटी उनकी इम्पेयर हो जाती है। उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हेल्पलाइंस बनाई जानी चाहिए, जो कि हमारे स्टेट में बना भी रखी हैं। हाउसिंग लोन्स मिलने चाहिए। एक हमें प्रोडक्टिव एजिंग, मतलब जब तक उनको किसी न किसी काम में अगर हम लगा सकते हैं तो उनको री एम्प्लॉयमेंट किसी तरीके से ऐसे उनको एंगेज करा जा सके ताकि मेंटल उनकी फैकल्टीज काम करती रहे। उनके लिए वेलफेयर फंड्स सेटअप करें। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मीडिया को हम इन्वॉल्व करें। अलग अलग प्रोग्राम्स किए जाने चाहिए। मीडिया आजकल भी आप देखेंगे बुजुर्गों के हाथ में भी अगर स्मार्टफोन्स हैं, वो भी व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे वो रील देखते हैं, तो ऐसी ऐसी इंफॉर्मेटिव हम रील्स बना सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑल हुक्ड ऑन टू दोज रील्स ना, कि जिसमें दिखाया जा रहा है कि अगर बच्चा परेशान कर रहा है तो किस तरीके से वो कानून को अप्रोच कर सकती हैं, उनके लिए क्या क्या कानून में अलग अलग प्रावधान हैं। एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत जो हमारे देश में की गई 2005 में, उससे पहले यूएन ने तो पहले ही कह दिया था कि हमें अपने ओल्डर पर्सन्स के लिए एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करना है। इंडिया में भी 2005 से हमने ये एक ओल्ड पर्सन्स डे सेलिब्रेट करना शुरू किया है, जो कि हर एक स्कूल में अगर आप देखें तो ग्रैंड पेरेंट्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसमें क्या है, जरूरी है कि बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट को, दादा दादी नाना नानी को साथ में स्कूल लेके जाए, तो जहां वो साथ में नहीं भी रहते थे फिर भी उनको बुलाया जाता है, ग्रुप एक्टिविटीज दी जाती हैं, बच्चे मिलके उनके साथ कोई प्रोग्राम्स अपने प्रिपेयर करते हैं, आइटम्स प्रेजेंटेशंस, वहां पर अलग अलग कॉम्पिटिशंस किए जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों का और ग्रैंड पेरेंट्स का एक इतना अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता है कि वो फिर इस तरीके के इवेंट्स के लिए दे लुक फॉरवर्ड टू दैट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नैतिक पतंग एक गेम डिजाइन किया है कि जिससे कि हम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स में हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें कि सारे के सारा परिवार मिलकर के साथ में इस गेम को खेलता है। हमें जरूरत है इस समय कि हम एल्डरली केयर को एजुकेशन में इंटीग्रेट करें। क्यों? क्योंकि हमें ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी है, कानून तो हमारे पास बहुत हैं, लीगल अवेयरनेस के लिए लीगल एड भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाता है ना, हमने वो हेल्पलाइंस भी इंस्टीट्यूट करी हैं, हमने कोशिश करी है किसी की तरीके से हम डिजिटलाइज कर दें सिस्टम्स ताकि वो इजीली एक्सेस कर सकें, लेकिन उसके बावजूद भी एल्डर अब्यूज तो रुक नहीं रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है। तो हमें इस तरीके के इंटरजेनरेशनल प्रोग्राम्स बनाने हैं, हमें अपने करिकुलम को रिवाइज करना है ताकि जेरियाट्रिक हेल्थ, कॉग्निटिव डिक्लाइन, फिजिकल फंक्शनैलिटी, न्यूट्रिशनल नीड्स, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं बचपन से ही बच्चों को पढ़ाई जाएं। हम मॉड्यूल डाल दें स्कूल्स नहीं, बच्चे समझे, वो देखें घर में ये सब ध्यान में रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा। यही बच्चे घर जाके अपने पेरेंट्स को बताएंगे, कल को उनके पेरेंट्स भी अपना देखभाल करने में सक्षम होंगे, अपने बुजुर्गों की भी देखभाल कर पाएंगे, और ये बच्चे भी कल को जब बड़े होंगे इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ आएंगी तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में उन चीज़ों का असर रहेगा। उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, नॉर्मली स्कूल्स कॉलेजेस में मेडिकल मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस करें, CPR, किस तरीके से वाइटल्स को चेक करना है, मेडिकेशन शेड्यूल्स को हम कैसे कर सकते हैं, मोबिलिटी एड्स, हियरिंग एड्स, इन सबको किस तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है। फिर चाहे हम

0: जी पढ़ते हैं चाहे सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, एजिंग से रिलेटेड जो एजुकेशन है कि बड़े होते होते क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार क्या होता है कि हम रियलाइज ही नहीं करते, सडनली हमें लगता है कि इनको तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो हम शुरू से ही अगर उस चीज़ को समझ सकें, अगर हमारे बच्चों में हम वो सेंसिटिविटी डाल सकें, उनको एजुकेट कर सकें, तो वो चीज़ बहुत अच्छी होगी, चाहे स्कूल्स में कॉलेजेस में। और जो एडल्ट्स के लिए हमने इतने डिजिटल प्रोग्राम्स बनाए हैं उसमें उनको डिजिटली उनको लिटरेट करना भी जरूरी है, क्योंकि प्रोग्राम्स है लेकिन वो एक्सेस कैसे कर पाएंगे जब तक वो डिजिटली अवेयर नहीं होंगे। तो उसमें फिर यही जो स्कूल्स कॉलेजेस में अगर हम कम्युनिटी आउटरीच कोई एक्टिविटीज रखें, बच्चों को कहें कि आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, आप जाकर के उनके साथ ये आप उनको एजुकेट कीजिए, आप ओल्ड एज होम्स में जाइए या आपके घर में आपकी कम्युनिटी में जो एल्डर लोग हैं आप उनको अवेयर कीजिए, आप उनके साथ मिल करके ये क्विज सॉल्व कीजिए, या इस तरीके से अगर हम प्रोग्राम्स इंटीग्रेट कर पाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। बैरियर्स जो हैं जस्टिस के लिए, कानून है सारे के सारे हमारे पास, पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे लीगल प्रोसीजर्स हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। जो बुजुर्ग हैं उनके अपने मोबिलिटी के इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं, बहुत जगह पर उन्हें पता भी नहीं है कानून का। उसके अलावा जो एक सोशल स्टिग्मा है, कोई क्या कहेगा कि आपने अपने ही बच्चों के खिलाफ शिकायत कर दी, परिवार उससे टूट जाएगा। वो ये नहीं समझते, परिवार तो तब टूट गया जब आपके बच्चों ने आपके साथ इस तरीके की हरकत करी, आप तो केवल उस हरकत की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वो जो स्टिग्मा है जिसमें कि हम कहते हैं नहीं बड़ों को ही समझदार होना चाहिए, बच्चों ने तो गलती की थी आप तो समझ सकते थे, लेकिन अब देखिए इतने अच्छे अच्छे जजमेंट्स आए हैं जिसमें कोर्ट ने क्या कहा है कि अगर आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं आप उन्हें अपने घर से एविक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं अपने घर में अब्यूजिव बच्चों का बोझ ढूं, या फिर मैंने प्रेम में आकर के अपने बच्चों के नाम पर कोई प्रॉपर्टी कर दी थी, कल को वो मेरा ध्यान नहीं रखते हैं तो मैं उस ट्रांसफर को भी वॉइड कर सकती हूँ। तो वी गॉट सच गुड जजमेंट्स, बट द थिंग इज कि लोगों को पता नहीं है, जिससे की वजह से वो घबरा जाते हैं। एक्सेस बढ़ाने के लिए हमें ई कोर्ट्स का सहारा लेना पड़ेगा, ऑनलाइन फाइलिंग, टेली लॉ सर्विसेज, जैसे अगर हम टेली मेडिसिन की बात करते हैं वैसे ही हमें टेलीफोन पे भी कंसल्टेशंस की बात करनी पड़ेगी। सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल है जो एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बस ज़रूरी है अवेयरनेस की, हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम स्कीम्स हैं अवेयरनेस, जिसमें कि हर एक वर्ग की ये जिम्मेदारी है, बच्चा बूढ़ा जवान सब मिल करके जब इस पे काबू करने की कोशिश करेंगे तभी हमें सक्सेस मिलेगी।
1: You had been listening to a talk on strengthening access to justice for senior citizens from constitutional values to classroom learning by Professor Vageshwari Deswal, University of Delhi. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

रैप्सोडी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के दी रियल रेडियो 107 एफएम रेनबो पर ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ हाजिर है आपकी अपनी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत लेकर आपका ही पसंदीदा संडे इवनिंग शो यादों की बारात। और जैसा कि आप जानते हैं कि यादों की बारात में हम उन फिल्मों का जिक्र करते हैं, उन फिल्मों के गाने प्ले करते हैं आपके लिए, जो कि जैसे कि ये फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त है, तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में कई सारी फिल्में बॉलीवुड में रिलीज हुई होंगी, तो उन्हीं में से कुछ चुनकर हम लाते हैं आपके फुल टू इंफरटेनमेंट के लिए। और जैसा कि मैं कहती हूँ, छाया लोक मतलब म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम। और ऐसा है कि बातें तो करूंगी ही कई सारी फिल्मों को लेकर, लेकिन क्यों ना सबसे पहले आगाज करें उस गीत के साथ, नदियां चले चले रे धारा, सफर को आगे बढ़ाना है। और फिल्म सफर से आपके लिए ये गीत मन्ना डे की आवाज में बड़ी खूबसूरती से इंदिवर ने इसे कलमबद्ध किया है और कल्याण जी आनंद जी ने संगीतबद्ध किया है।

जी हाँ, इस फिल्म का नाम है सफर, और ये फिल्म जो है जिसे आपने गाना सुना, ये रिलीज हुई थी 1970 में। कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस फिल्म में 5 गाने थे और हैं। ये फिल्म एक भावुक पारिवारिक और रोमांटिक ड्रामा थी जिसमें राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, फिरोज खान और अशोक कुमार मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म की कहानी की बात अगर संक्षेप में करूं तो नीला का किरदार निभाया था शर्मिला टैगोर ने, जो कि एक मेहनती मेडिकल छात्रा और डॉक्टर है। अविनाश का किरदार निभाया था राजेश खन्ना ने, जिसे कैंसर हुआ है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। वो जानता है, अविनाश को पता है कि उसके पास जीने के लिए बहुत कम समय है। अविनाश नीला से प्यार करता है, लेकिन अपनी बीमारी के कारण वो नीला के जीवन में बाधा नहीं बनना चाहता। वो नीला को अपने से दूर करने की कोशिश करता है और अपने अमीर दोस्त जिसका नाम शेखर, और शेखर का किरदार निभाया था फिरोज खान ने फिल्म में, वो उसके परिवार की मदद करता है। कहानी एक दुखद मोड़ लेती है जब अविनाश की मृत्यु हो जाती है और नीला की जिंदगी में नए सवाल खड़े होते हैं। फिल्म के गाने जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, किशोर कुमार की आवाज में बेहद पसंद किया जाता है, आज भी लोग सुनते हैं। जीवन से भरी तेरी आंखें, जो तुझको पसंद हो वही बात कहेंगे, मुकेश की आवाज में ये गीत कर्णप्रिय इतना है कि एक बार क्या बारंबार सुने तो भी जी नहीं भरता। नदियां चले चले रे धारा, मन्ना डे की आवाज में जिसे अभी आपने सुना, हम थे जिनके सहारे, ये गीत लता मंगेशकर ने गाया था फिल्म में। और राजेश खन्ना के अभिनय की बात करूं तो उस दौर के सुपर नेचुरल स्टार जो है वो राजेश खन्ना का शानदार और संवेदनशील अभिनय, अमर संगीत, कल्याण जी आनंद जी की का संगीत और इंदिवर के बोल जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। भावनाओं और संवाद की बात करूं तो जिंदगी के अर्थ और अकेलेपन को दर्शाती एक गंभीर और अलग कहानी है। इसी फिल्म से एक और गीत आपको सुनवाना चाहूंगी किशोर कुमार की आवाज में।

सूर्य की घड़ी में समय उछला है 8:15 और फिलहाल आपने ट्यून कर रखा है म्यूजिकली योर्स बोले तो 24/7 ऑल डे ऑल नाइट रहता आपके साथ। और फिलहाल आप सुन रहे कार्यक्रम छायालोक में संडे इवनिंग सेगमेंट यादों की बारात अपनी आज फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत के साथ। और अब अगली फिल्म जिसके बारे में मैं आपसे कुछ बताना चाहूंगी वो है सागर। 1985 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, बॉक्स ऑफिस पर एक सफल हिट फिल्म रही थी। ये 1985 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल थी और इसे भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भी भेजा गया था। और मुख्य किरदारों की बात करूं तो कमल हसन ने इस फिल्म में राजा का किरदार निभाया, एक गरीब मछुआरा जो मोना से प्यार करता है। अब जाहिर सी बात है जिन्होंने देखा है फिल्म उन्हें तो पता है कि मोना का किरदार किसने निभाया, लेकिन अगर जिन्होंने नहीं देखा उन्हें तो बताना पड़ेगा डिंपल कबाडिया ने मोना का किरदार निभाया था। और मोना डी सिल्वा गोवा के रेस्टोरेंट चलाने वाली युवती इस फिल्म से उन्होंने अभिनय में वापसी की थी। ऋषि कपूर भी इस फिल्म में है, रवि का किरदार निभाया था और वो एक अमीर उद्योगपति जो अमेरिका से लौटता है। मधुर जाफरी जो कमला देवी का किरदार निभाती हैं, रवि की दादी माँ। कहानी अगर संक्षेप में कहूं तो कुछ इस तरह है कि गोवा की पृष्ठभूमि पर आधारित ये एक प्रेम त्रिकोण लव ट्रायंगल की कहानी है। राजा बचपन से दोस्त मोना से प्यार करता है पर भावनाओं को कह नहीं पाता। तभी अमीर परिवार का रवि गोवा आता है और मोना को दिल दे बैठता है। मोना भी रवि से प्यार करने लगती है जिससे राजा का दिल टूट जाता है। अंत में राजा अपने प्यार का बलिदान दे देता है। फिल्म की खास बात अगर कहूं तो शानदार संगीत, आर डी बर्मन का संगीत और जावेद अख्तर के गीत इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी थी। सागर किनारे चेहरा हो या चांद, चेहरा है या चांद खिला है, सच मेरे यार है जैसे गाने आज भी

अमर हैं। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए सुनवाती हूँ आपको किशोर कुमार की आवाज में वो गीत जिसके बोल है सागर जैसी आंखों वाली, जावेद अख्तर ने बड़ी खूबसूरती से कलमबद्ध किया है, और आर डी बर्मन का संगीत।

आगे बढ़ते हुए मैं जिक्र करना चाहूंगी उस फिल्म का जो रिलीज हुई थी 5th अगस्त 1994 में, हम आपके हैं कौन। और ये फिल्म बहुत हिट रही। इसमें मुख्य कलाकार नजर आए थे सलमान खान, प्रेम का किरदार निभाए, माधुरी दीक्षित निशा के किरदार में दिखी थी। इस पारिवारिक रोमांटिक फिल्म में कई सारे गाने थे और इसकी सबसे बड़ी यूएसपी की बात करूं तो इसका भव्य पारिवारिक उत्सव, भारतीय संस्कृति का चित्रण और सुपरहिट संगीत। फिल्म की कहानी संक्षेप में कहूं तो कहानी में जो है प्रेम यानी सलमान खान और निशा यानी माधुरी दीक्षित के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। प्रेम के जो बड़े भाई थे राजेश और निशा की बड़ी बहन पूजा का विवाह होता है। दुर्भाग्य से एक हादसे में पूजा की मृत्यु हो जाती है और छोटा बच्चा रह जाता है। परिवार के दबाव में निशा और राजेश का विवाह तय किया जाता है ताकि बच्चे को माँ का प्यार मिल सके। अंत में गलतफहमी दूर होती है और दोनों परिवारों की सहमति से प्रेम व निशा का मिलन हो जाता है। और फिल्म जो है वाकई में बहुत खूबसूरत थी। और इस फिल्म में सलमान खान, माधुरी दीक्षित के अलावा मोनीश बहल, रेणुका शाहणे, अनुपम खेर, रीमा लागू, आलोक नाथ, कई सारे जो लोग थे मतलब एक्टर्स थे वो भी दिखे थे। तो चलिए देर ना करते हुए आप भी क्या कहेंगे कि सुलक्षणा कार्यक्रम तो लाई है, लेकिन क्या है ना कि कार्यक्रम सुनने का जो मजा है वो कई गुना बढ़ जाता है जब कार्यक्रम सुनते सुनते कुछ खाने को भी मिल जाए और वो भी बहुत मीठा हो, बहुत अच्छा हो। कुछ लोग तो जूस के शौकीन होते हैं, तो ऐसा न सोचिए कि मैं कुछ नहीं लाई हूं। अगले म्यूजिकल ट्रैक के जरिए आप तक पहुंचाती हूं ना चॉकलेट लाइम जूस।

जी हाँ दोस्तों, आपने ट्यून कर रखा है म्यूजिकली योर्स वाला चैनल, यानी कि वो चैनल जो कनेक्ट करता है दिल से दिल तक, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है हमारा और आपका 107 एफएम रेनबो के जरिए। फिलहाल आपने ट्यून कर रखा है इस चैनल को और सुन रहे कार्यक्रम यादों की बारात विद योर आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत। और अब अगली फिल्म जो है उसके बारे में आपको बता दूं, बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म विजयपथ, 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई थी फिल्म। इस फिल्म में अजय देवगन, तब्बू और डैनी डोंजांगपा ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म की खास बात अगर कहूं तो अजय तब्बू की पहली जोड़ी, ये फिल्म अभिनेत्री तब्बू की शुरुआती और अजय देवगन के साथ उनकी पहली फिल्म थी जिसके लिए तब्बू को बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। गाने भी सुपरहिट, फिल्म भी बहुत चली थी। और अब सोच रही हूं देर ना करते हुए क्यों ना आपको इस फिल्म से वो गाना सुनवा दूं। राह में उनसे मुलाकात हो गई। इस गीत को आप सुनेंगे अलका याग्निक, कुमार शानू की आवाज में,

आगे बढ़ते हुए कहना चाहूंगी, हर दिल जो प्यार करेगा, हर दिल जो प्यार करेगा, ये वो फिल्म है जो रिलीज हुई थी 4 अगस्त इन द ईयर 2000। और इस फिल्म में मुख्य किरदार सलमान खान, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी ने निभाए थे। और क्या बताऊँ, मतलब सभी ने बहुत कमाल की एक्टिंग की थी। सलमान खान जो है वो राजू

जो है उसकी भूमिका निभाए थे, और प्रीटी जिंटा जो है जानवी के रूप में नजर आई, रानी मुखर्जी पूजा ओबेरॉय के रूप कैरेक्टर में नजर आई थी। फिल्म जो थी वो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, हिट साबित हुई और साल 2000 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म के गाने के बारे में एक गाना मैं प्ले करूंगी, पिया पिया ओ पिया पिया हर दिल जो प्यार करेगा, बहुत लोकप्रिय हुआ था और इसका संगीत इसकी सफलता का एक बड़ा कारण था। तो क्यों ना सुन लिया जाए वो गीत।

आगे बढ़ते हुए जिक्र करना चाहूंगी, जी हाँ, कोई मिल गया। अच्छा, कोई मिल गया ये मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ, हमें तो हमेशा 107 मिल जाता है और 107 के जरिए आप सब प्यारे प्यारे श्रोताएं जो हैं वो जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं और हमारा भी कनेक्शन होता है दिल से दिल तक। फिल्म कोई मिल गया 8 अगस्त 2003 में रिलीज हुई थी और ये भारत की पहली साइंस फिक्शन फिल्मों में से एक थी जिसमें एक एलियन यानी जादू, याद है जादू, जादू को दिखाया गया था और इस फिल्म के हीरो ऋतिक रोशन और हीरोइन प्रीटी ज़िंटा थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एक बड़ी सुपरहिट साबित हुई थी और क्या बताऊं, इस फिल्म में अन्य मुख्य कलाकार जो थे उनके बारे में अगर जिक्र करूं तो रेखा को आपने देखा था रोहित की मां की भूमिका में। फिल्म की खास बात कहूं तो जादू, एलियन, हाँ याद आया ना। चलिए, यही तो कारण है कि हम लेकर आते हैं यादों की बारात। फिल्म में एक बाहरी ग्रह के प्राणी जादू का चरित्र था जिसे दर्शकों और बच्चों ने बहुत पसंद किया। फिल्म की और भी यूएसपी बताऊं तो बेहतरीन अभिनय, ऋतिक रोशन ने एक मानसिक रूप से कमजोर डेवलपमेंटली डिसेबल्ड युवक रोहित का किरदार निभाया था जिसकी बहुत तारीफ हुई। और इस फिल्म में एनिमेट्रॉनिक्स और बेहतरीन स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया, दर्शकों ने। और इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण राकेश रोशन ने किया था। बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफलता मिली थी इस फिल्म को और कई सारे अवार्ड भी मिले थे और इसके बाद क्रिश जैसी सुपर हीरो फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई। और फिलहाल आप सभी के लिए उदित नारायण और चित्रा की आवाज़ में कोई मिल गया।

ऐसा है दोस्तों कि स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 8:52, शेष बचे 8 मिनट। और जी हाँ, आपको पता है कि 9 बजे आपसे विदा लेना पड़ेगा मुझे, लेकिन ऐसा है, यादों की बारात कार्यक्रम चल रहा हो और अगस्त का महीना हो और उस कार्यक्रम में कोई देशभक्त

फिल्म का जिक्र ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। देशभक्ति और एक्शन से भरपूर प्रसिद्ध हिंदी फिल्म कर्मा रिलीज हुई थी 8 अगस्त 1986 को, 8 अगस्त 1986 को, और सिनेमाघरों में ये रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन सुभाष घाई ने किया था। फिल्म की खास बात अगर आपसे बताऊं तो इन शॉर्ट यही कहूंगी कि शानदार स्टार कास्ट फिल्म में दिलीप कुमार, नूतन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नसरुद्दीन शाह, श्रीदेवी, अनुपम खेर जैसे कई बड़े कलाकार एक साथ नजर आए थे। और डॉक्टर डैंग अनुपम खेर जो है वो विलन के किरदार में नजर आए थे। जी हाँ, और डॉक्टर डैंग का किरदार निभाए थे, काफी प्रसिद्धि मिली थी। देशभक्ति और संगीत इसकी यूएसपी थी एक तरीके से कहा जाए तो। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित इसका गाना ए वतन तेरे लिए आज भी देश प्रेम के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से गाया जाता है। कहानी की बात करूं तो एक रिटायर्ड जेलर दिलीप कुमार द्वारा देश के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तीन खतरनाक कैदियों को गुप्त मिशन पर भेजने की अनोखी कहानी पर आधारित थी। और अब सुलक्षणा चलते चलते यही कहेगी, आप सभी से आज्ञा चाहती हूं, लेकिन आप सभी से कहूंगी कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपने चारों तरफ खुशियों के फूल बिखेरते रहिए। और आप सभी के लिए ये गीत कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाज में इस गीत को बड़ी खूबसूरती से देश प्रेम की भावना से ओत प्रोत होकर लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, ए वतन तेरे लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।